0: yoga for the yoga for healthy.
1: ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, केंद्र में मेरे सहयोगी प्रताप राव जाधव जी, अन्य सभी महानुभाव, यहां कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी।

0: कम्युनिटी रेडियो बेंसिगर 107.8 प्रस्तुत करते हैं
1: दिल की आवाज,
0: दिलों से दिल तक। तेरे दिल की आवाज का सीधा प्रसारण अब से हर रविवार सुबह 10:30 से लेकर 11:30 तक होगा और आपके साथ होगी आपकी शायरी जर्निया से। देर किस बात की, अपना फोन उठाइए और हमें डायल कीजिए। डायल करने के लिए हमारा नंबर
1: 0474-293-1111।
0: नंबर एक बार फिर से 0474-293-1111।

0: नमस्कार, दिल की आवाज सुनने वाले सभी श्रोताओं को शायरी का सलाम, नमस्कार और आदाब। दोस्तों, आज एक खास दिन है, हाँ, यानी जून महीने के तीसरे संडे को हम फादर्स डे मनाते हैं। तो आज का ये सफ़र समर्पित है उस खास इंसान के नाम जो हमारी ज़िंदगी में पहली ताकत, पहला हीरो और पहला सहारा होता है। जी हाँ, वो हमारे पापा ही होते हैं। पिता की छाव है जो खुद धूप में जलकर हमें ठंडक दिलाता है। हाँ, तो इस सभी लोगों को, हाँ, हमारे फादर्स को हम प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं हमारा प्रोग्राम। हाँ, शायद कॉलर आ गया है। हेलो, दिल की आवाज में स्वागत।
1: गुड मॉर्निंग पत्र कॉलर है।
0: गुड मॉर्निंग कैसे हो?
1: बहुत दिन बाद हमारे को पत्र कॉल मिला है।
0: जी कैसे हो?
1: ठीक है यार, अच्छा है।
0: और सुनो, सही
1: है?
0: हाँ जी,
1: आज आदमी लोग पूरा नीट का एग्जाम है ना,
0: इसलिए
1: बात है। ओके,
0: और
1: अच्छा है। और गाना बोला था,
0: कौन सा गाना चाहिए?
1: अगर दो लाइन में

0: जब दीप जले आना, जब शाम जले आना, जब दीप जले आना, जब शाम जले आना, रंगे दुब मिल गए भूले न जाना मेरा प्यार न निजराना, जब दीप जले आना, जब शाम जले आना। ये ब्यूटीफुल गाना डालो हमारे लिए।
1: ओके जी, आपके लिए प्यार से गाना हम जरूर लगा देंगे और दिल की आवाज में बुलाने के लिए शुक्रिया बुलंद।

0: दिल की आवाज में आपका फिर से स्वागत और एक प्यारा सा कॉलर आ गया है। हेलो, दिल की आवाज में स्वागत।
1: नमस्कार
0: जी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो?
1: बस बढ़िया।
0: जी जी जी,
1: आप लोग जो टेलीकास्ट करते हैं वही बस एंजॉय कर रहे हैं।
0: अच्छा जी, तो आपको आज फादर्स डे है, तो फादर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सुनाओ सर, कौन सा गाना चाहिए
1: आपको? भी पूरा दुनिया का हर फादर्स को हमारा तरफ से, हमारा फैमिली की तरफ से एकदम क्या विश कर रहे हैं।
0: ओके जी, कौन सा गाना चाहिए सर?
1: आदमी मुसाफिर है।
0: बहुत ब्यूटीफुल गाना है, गाओगे? अच्छा जी, तो ये प्यारा सा गाना हम आपके लिए जरूर लगा देंगे। और दिल की आवाज में बुलाने के लिए शुक्रिया, बुलाते रहिएगा।

0: दिल चुराने में आगे आ गया, ये गाना चाहिए।
1: ओके जी, तो आपके लिए प्यार से गाना हम जरूर लगा देंगे और दिल की आवाज में बुलाने के लिए शुक्रिया, बुलाते रहिएगा।

0: दिल की आवाज में आपका फिर से स्वागत और एक प्यारा सा कॉलर आ गया है। हेलो, दिल की आवाज में स्वागत।
1: नमस्ते शैली जी।
0: नमस्ते जी, कैसे हो?
1: मेरे बेटे ने मुझको बाहर कर दिया, तो बहुत दुख लग रहा है। हमारे बच्चों सकवा में नहीं छोड़ा देखने के लिए।
0: अरे नहीं रो, नहीं रो, सब ठीक हो जाएगा। क्या बोलते हैं ना, शायद थोड़े दिन में आपके बेटे को लगेगा कि हमने जो किया वो गलत किया और आपको वापस ले आएंगे। डोंट वरी, अरे नहीं रो, नहीं रो, शायद अगर वो आपका बेटा सुन रहा है, आप उनसे जरूर कहना चाहूंगी कि देखो अगर
1: रेडियो क्या नहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए दो बच्चे, हमें तो बहुत अच्छे से उसको पाला, तो बच्चे सक हमारे सक नहीं छोड़ रहे हो।
0: अरे नहीं रो, सब ठीक हो जाएगा। आप दुआ करो और हम सब दुआ करेंगे कि आपके बेटे को पता लगे कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है और आपको आपके घर पे वापस ले आए। डोंट वरी,
1: हमारी जगह
0: जी
1: मेरे बहन हमें पंचायत में
0: अच्छा
1: मेरे पति काम घर को बहुत कमाया वो, हमें तो दो तीन हफ्ते हमें खा कर हमें सो कर हमें बहुत बहुत नुकसान, हमें शुक्रवार दिन उधर से उतरे।
0: अरे नहीं रो, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि क्या और क्या कह सकते हैं। अरे सच में बहुत अजीब लग रहा है जब आप ऐसे रो रहे हो ना। अरे नहीं रो, सब ठीक हो जाएगा और आपके बेटे जी
1: बहुत टेंशन लेकर लेकर मुझे तबियत नहीं आ रहा थी, वो तबियत क्या बोलूं, मेरे छाती में बहुत दुख से लगा हॉस्पिटल में, वो बोल रहे क्यों टेंशन लगा रही हो, वो छाती दुख हो रहा है, दवाखाने को जाकर रहे, मुझे तो बहुत सोचने सक नहीं हो रहा। मेरा बेटा वो ही सुनता है
0: और सच में ये जरूर कहना चाहूंगी कि जिंदगी में कितने बड़े इंसान अगर हो और अगर माँ और बाप के जो आंसू अगर गिरते हैं ना, तो हम बिल्कुल जीरो होते हैं। तो ये बताओ, कोई गाना सुनना चाहोगी आप? कौन सा गाना चाहिए? सुनाई नहीं दिया।
1: दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा होगा,
0: दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। ओके ओके ओके ओके ओके, तो आप टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी एट ऑल, ओके, और हम सब दुआ करेंगे। माँ का आंसू ऐसे ऐसे वेस्ट नहीं होता, डोंट वरी, ओके। तो आपके लिए प्यार से गाना हम जरूर लगा देंगे और दिल की आवाज में बुलाने के लिए शुक्रिया, बुलाते रहिएगा।

0: दिल की आवाज में आपका फिर से स्वागत है। और एक प्यारा सा कॉलर आ गया है, शायद कॉल कट हो गया, कोई बात नहीं। दोस्तों हम हमेशा कहते हैं, और शायद मैं हमेशा कहती हूँ कि माँ बाप जो होते हैं ना, कोई क्या बोलते हैं ना, भाई मिलता है, अगर हम दोस्त बनाते हैं या फ्रेंड्स बनाते हैं तो कहते हैं कि भाई की तरह है, बहन की तरह है। लेकिन माँ बाप जो होते हैं ना, माँ बाप यू कांट क्या बोलते हैं ना, एक डुप्लीकेट माँ बाप हम नहीं ला सकते, बस एक ही माँ बाप हाँ, जो हमारे लिए हमेशा, जो दिल से चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें। हाँ, और आपने जैसे सुना, दुनिया में चाहे कितने भी बड़े हों तो यू बिकम वेरी हाई इन लाइफ, यू रीच वेरी बिग हाइट्स। हाँ, कितने भी बड़े इंसान हो, लेकिन माँ बाप के अगर आंसू, एक भी आंसू अगर गिरता है, पता है, यू जस्ट बिकम अ ज़ीरो। हाँ, एकदम पूरी तरह से शून्य हो जाते हो एक्चुअली देखने जाओ। और खासकर अगर माँ की आंखों से आंसू अगर निकलता है, माँ की आंखों से अगर आंसू निकलता है, सच में जिंदगी में चाहे आपके पास कुछ भी हो, कुछ भी नहीं होने के समान होता है। हाँ, शायद एक कॉलर आ गया है। हेलो, दिल की आवाज में स्वागत।
1: जी शायनी जी, नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, कैसे हो
1: जी? मैं हूँ कोयला से बुलाने वाला पीके राजीव
0: जी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो?
1: तो ठीक है ठीक है। नहीं, इससे पहले का कॉलर अपना ना छोटा सा मुश्किल दिखा रहा था, क्योंकि इंसान ऐसा है कि हर मुश्किल को सामना करना पड़ता है
0: जी,
1: क्योंकि जिंदगी एक समुद्र का जैसा है, बहुत लंबा है, उसको तीर के उस पार जाना पड़ता है, मगर उसमें बहुत गहरा मुश्किल भी है
0: जी,
1: ये सब हम सामना करना पड़ता है।
0: हाँ,
1: मैं
0: ये
1: तो अपना जी जी, मैं तो अपना जिंदगी में बहुत मुश्किलों का सामना किया, तीर यहाँ के तीरते तीरते अफ्रीका तक गया था। और हमें एक गाना आज पूछा है जी।
0: कौन सा गाना चाहिए?
1: वो अपना पुराना गाना है, वो जो हवा हवा सीरियल में ही है ना, आया आया वो आया यार मेरा, आया रे एक बार मिला रे, मैं उससे मिलूंगा, यार आया रे यार आया रे, वो गाना चाहिए जी।
0: हवा हवा ए हवा, ओके ओके,
1: वो वही।
0: अच्छा, हवा हवा नहीं चाहिए?
1: हवा हवा नहीं, वही कैसेट में है ना ये गाना, आया आया।
0: अच्छा, ओके ओके ओके ओके,
1: आपको सुना होगा वो गाना, क्योंकि
0: जी
1: वो
0: जी
1: जो,
0: जी आप गाओगे?
1: यार मेरा आया,
0: आप गाओगे?
1: नहीं नहीं, मैं ये गाना गा, दूसरा गाना गाएगा।
0: अरे बिंदास गाओ।
1: शीशे जैसे अरमान लेके राहों से न गुजरना, शीशा तो टूट जाता है। नहीं, ये सब सच बात है ना,
0: क्योंकि
1: इंसान कितना भी खुश रहने से भी उसको कभी ना कभी मुश्किलें को बहुत मुश्किल आ जाता है, तब हम दिल टूटना नहीं है
0: जी जी,
1: यही तो सबसे बड़ी बात है, किसी को भी हर समय सुख नहीं रहता है वो।
0: हाँ, हमेशा हमेशा तो हमेशा हैप्पी हैप्पी लाइफ नहीं रहता, थोड़ा दुख थोड़ा सुख तो हमेशा
1: मेरा
0: इट गोज ऑन।
1: अपना ही जिंदगी हमको मालूम है, मैं भी ऐसे मुश्किलों को सामना किया है, तो भी क्या है जिंदगी
0: नहीं
1: है।
0: मुश्किलों का सामना ठीक है, लेकिन जब हमारे खुद के बच्चे हमें घर से निकाल दे तो वो बहुत तकलीफदायक होती है
1: जी। जी वो तो जी, सही बात है, आजकल केरला में
0: तो वही वही वो जो कॉलर ने कहा कि उनके बच्चों ने उनको बाहर निकाले, इसीलिए वो बहुत टेंशन में है। ओके जी, तो आप
1: जी, वो एक बात है शाइनी जी, उनको बोलना था अगले बार, उनको बोलना है वो लोग ऐसा मुश्किल को सामना नहीं करना, उनको कहीं भी ना कहीं जाके बोल सकता है
0: जी,
1: वो चुप नहीं रहना, क्योंकि उनका घर से उनको निकाल नहीं सकता, क्योंकि माँ बाप को देखने की फर्ज है
0: जी,
1: बच्चे लोग का है फर्ज,
0: फर्ज नहीं है तो भी कानून आजकल उनके साथ है। तो ओके जी, तो आपके लिए प्यार से गाना हम जरूर लगा देंगे, और दिल की आवाज में बुलाने के लिए शुक्रिया, बुलाते रहिएगा।

0: की आवाज में स्वागत।
1: हेलो प्रिय सहनी, नमस्ते
0: जी। नमस्ते जी, कैसे हो?
1: अच्छा दिन है शाइनी अवर हमारे रेडियो के सभी प्रियजनों के। हैप्पी फादर्स डे, योगा अवर, संगीत है मुझे एक गाना।
0: कौन सा गाना चाहिए?
1: मुझे गाना है हम साथ साथ आई फिल्म का गाना है, ये तो सच है के भगवान चाहिए।
0: ओके जी, ओके, बहुत प्यारा गाना।
1: हमारे पिताओं के दिल से श्रद्धांजलि।
0: ओके जी।
1: और आज हमारी प्यारी सुनने वाली नसीरा की शादी की सालगिरह है। नसीरा और उनके पति के शादी की हजार सालगिरह की शुभकामनाएं।
0: My goodness, नूरजहान सालगिरह शुभकामनाएं। All these words from नूरजहान की मुंह से बहुत अच्छा लगता है। Good good improving हिंदी। तो आपके लिए प्यार से गाना हम जरूर लगा देंगे और दिल की आवाज में बुलाने के लिए शुक्रिया। बुलाते रहिएगा।
1: थैंक यू।

0: हेलो, दिल की आवाज में स्वागत। हेलो जी। हाँ नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: ये कौन बोल रहा है?
1: मेरा नाम कृष्णेंदु।
0: ओके जी, नमस्ते, कैसी हो?
1: मैं ठीक ही हूँ, तू कैसी हो?
0: हम ठीक हैं, हम ठीक। और सुनाओ। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ बोलो, कहाँ है आपका ध्यान? कहाँ है?
1: हम केवला से है।
0: और सुनाओ, कौन सा गाना चाहिए?
1: मैं बरसोरे मेगा मेगा।
0: अच्छा जी, ओके जी, तो आपके लिए प्यार सा गाना हम जरूर लगा देंगे। हाँ जी, और दिल की आवाज में बुलाने के लिए शुक्रिया, बुलाती रहिएगा।

दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी बात। पिता का प्यार सूरज की तरह होता है, दिखाई चाहे कम दे लेकिन उसकी रोशनी के बिना जीवन अधूरा है। अगर आपके पिता आपके साथ है तो आज उन्हें गले लगाइए, उनको शुक्रिया अदा कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिएगा। हाँ जी, और जो पिता आज आपकी यादों में बसते हैं उनके लिए एक छोटी सी दुआ ज़रूर कीजिएगा। इस प्यार सम्मान और कृतज्ञता के साथ आपकी शाइनी जर्मियास लेती हैं आपसे विदा। अगले हफ्ते मिलने तक नमस्कार।